हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 9 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: यूरेनियम ईरान में ही रहंदी, आपने हुर्मुज के गालन जो हिस्सो न बढ़ाईंदासी। ईरान वाजे करे छो। पार्लियामेंट जो कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी चयो आए तो अमरीकी नाकाबंदी खत्म थी। अमरीका जा दखण ईरान में हवाई हमला, सेंटकॉम जो चवण आए तो अमरीकी फौज दखण ईरान में ड्रोन खुदमुख्तियारी अमन मुआहदे ताई पहुंचण लाइ अहम असांजे अजीम कुर्बानी जी बुनियादी सुतून मां एक अहम जाग्राफियाई अहमियत आहे। आबनाए हुर्मुज के कॾहिं बि ॻाल्हियुनि जो हिसो न बढ़ाईंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलदीप के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलदीप के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलदीप से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलदीप, रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तक खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध।

0: से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
0: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अल हबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

अज़ीम वक़ूफ़े अरफा अॼु अदा कई वेंदो। सॼी दुनिया खां ईंदड़ लखे हज पांधीअड़ा मिना में क़याम बाद मैदान अरफात में गॾु थींदा। हज पांधीअड़ा खुलियल आसमान में गुज़ारींदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी चीन जे सदर शी जिनपिंग सां अहम मुलाकात, ॿिन तरफ़न लागापन समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। चीनी सदर पाक चीन दोस्ती खे नाक़ाबिले शिकस्त करार ॾेई छॾियो, लागापन खे वधीक मज़बूत बणाइण ते पाकिस्तान जो किरदार सारा जॻो आहे। वज़ीर आज़म चयो त सदर शी जिनपिंग सां स्ट्रेटेजिक हम आहंगी वधीक मज़बूत बणाइण ऐं सीपे खे अॻिते वधाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। सदर शी जा कदम दुनिया में अमन, तरक्की ऐं गॾियल खुशहाली खे हथी ॾेई रहिया आहिनि। तब्दील थींदड़ दुनिया में पाक चीन दोस्ती अमन जी खुशहाली जे लाइ गॾियल कुवत रहंदी। वज़ीर आज़म चीनी हमनसब सां बि मुलाक़ात कई, मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ऐं यादाश्त नामनि ते सयूं। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जी बि चीनी वज़ीर आज़म सां गैर रस्मी मुलाक़ात।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समूरन मुसलमान मुल्कन का इब्राहिमी मुहिदे में शामिल थियण जो मुतालबो कर छो। डोनाल्ड ट्रंप आए तो इब्राहिमी मुहिदे से सही की शुरूआत सऊदी अरब ए कतर का थियण घुर्जे, बाद में बया मुसलमान मुल्क भी लाजमी तौर मुहिदे से सही कन। ईरान की अमरीका से मुहिदे बाद इब्राहिमी मुहिदे में शमूलियत एजाज हूंदी। तेहरान से मुहिदो न थियो तो पहिरियां खां वॾी ऐं ताक़तवर जंग थींदी। मौजूदा सूरत हाल ते पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद, कतरी अमीर, यूएई जे सदर ऐं मिस्री सरबराह सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल्हि थी आहे। तेहरान सां मुआदे लाइ पूरो उमीद आहे। कतर जे दौरे ते दुआ पहुतल ईरानी वफ जे कतरी वजीर आजम ऐं बियनि इक्तारनि सां अहम मुलाकात, मंजबंद असासनि जी बहाली ऐं आपनाए हुर्मुस ते ॻाल्हि ॿोल। मोहम्मद बाकिर कालीबाब जी क़यादत में परडे॒ही वज़ीर अब्बास एराकची ऐं बियनि कतरी इख़्तियारनि सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ातनि दौरान ईरानी सरकारी बैंक जो गवर्नर बि मौजूद हो। ईरान अमरीका सां जंग जे ख़ात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती एमओयू ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुआदे जे वेझो पहुचण न आहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़्द मोकिलण जो इरादो न आहे। आबनाए हुर्मुज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र न आहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: ಕಲ್ಲಂತೆ ಚಾಬದೆ ಚೋರ.
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.

दरिया ए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि. ग़ैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो. ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो. वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो. ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो.

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कहती है मम्मी मैं मनोज हूँ कि जिंदगी से अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। कोई मुझको थोड़ी
1: सी दे दे या मेरे दिल का धड़कना। देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: सिंध का है ये मुनफरिद तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM Network, सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हैं उनको कहेंगे मैनी मनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं बेस्ट ऑफ के लिए हमें कामयाब होते रहें हमेशा हमेशा, आमीन। तो मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों शराहों वारियों और पहाड़ों दरियाओं और गुजारों हम चाहने वालों को भी

बातें वो सारी बातें आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे गाना और इस गाने के साथ ही आपको बताएंगे कि प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। सो हैव अ सॉन्ग।

0: छा क्या किथे वन्या घर में वेठो आया पर ठीक ही नया शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
1: छो भला छा छुआ तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
0: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे न भुख सही लगे थी आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वन था आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही नाया।
1: यार तुझा घणा न बस हिकी तुझो मैं तो खराब आ छा तो न बुधो आ जे मादो सही न हुंदो त भुख भी न लगंदी न हाजमो थींदो त मिलंदी
0: त पो मां छा कया।
1: सोलो हल आहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छींदो भुख खुली वेंदई खाधो सुठे नमूने हजम थींदई पेट फूक सुस्ती में ताकत ईंदई।
0: वाह यार गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो।
1: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरामू 58 0 फायदो दुरुस्त त इंसान आपकी शहर सखर
2: HMPC
1: बवासी
2: दर्द
1: अर्कुन निसाबे औलाद दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के हमें डॉक्टर आगा लियाकत अली
2: टाइम
1: हफ्ते से जुमेरात
2: बजे से शाम 5 4
3: पहचान 88

0: से
1: आपको भी ईद मुबारक।
0: कल आप वहाँ छोड़ने का
1: तब किस वक्त चल के आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि कोई गाना सुनाने आए हैं, कोई गाना लेकर आए हैं?
0: आमरान आमरान जमाली का गीत सुन ले, एना मैं फिल्म में मोर और मचियो मेरा तो सुन ले। ताकि वफा फिल्म इज्जत है कटर बिलावल कटर वापस कर ले जिसकी कल शो करो इंशाल्लाह। आप मर जाने हो तो गेस्ट लोग भी नहीं चल रहा।
1: ओके जी बिल्कुल चलेगा चलेगा, आज चलेगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज। और गाना हम सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। ये FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी,
1: मेरी जिंदगी
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सिंध की होश भी सिंध की है। नेटवर्क सिंध।

0: सिर लगाओ गाना सुनाओ में एक बार फिर से वापस आ चुके हैं जी, और हम कॉल्स रिसीव करेंगे आप लोगों की. सो कॉलर मेरे से लाइन पे मौजूद होंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम, सागर भाई बात कर रहे हैं. सागर भाई
1: कॉल मिला रहा हूँ.
0: ओके जी, और हो सकता है

0: के जी ने
1: तो से बात मुझे
0: बिल्कुल आज आएंगे
1: कॉलेज लगती रहती है रहता हूँ
0: पावर। ओके आज आपकी कॉल जरूर लगेगी, बेफिक्र हो जाएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। गाना आपका ये रहा।

Okay, it's a beautiful song. और मेरे पास एक और beautiful song है. और ये recently release किया गया है. The very very beautiful song by Samar Jafri. और मैं ये play करने जा रही हूँ for the very first time in my show. तो उसको सुनेंगे, enjoy करेंगे. और इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से commercial break plus news break की जानिब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

वफाकी घरू अज़ीम मौसिन नकवी जो मिना में पाकिस्तानी हाजिन की कैंप्स जो दौरों हाजिर से मुलाकात भी कई। वफाकी घरू अज़ीम 100 वरें के जमारे की रिहायश खाद अमेरिका गाजा इम्तिहानी अगभराई की दावा कर अमेरिका जहां ईरान से बीहर

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जो रचाचल यूरेनियम अमेरिका हवाले कयो वेंदो जेको तबाह कंदासीं या वरी उहो यूरेनियम ईरान सां गॾिजी ईरान में ई तबाह कयो वेंदो। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया अकाउंट ते तस्वीर शेयर कई जंहिंमें ओबामा जी पॉलिसी नदीअ जे टोकरे में ॾेखारी वई। ट्रंप जी पॉलिसीअ मूजिब अमेरिकी जंगी जहाज बमबारी कंदे ॾेखारियो वियो। यूरेनियम ईरान में ई हूंदो आबमाए हरमुज जी ॻाल्हियुनि जो हिसो न बणबो। पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अमेरिकी नाकाबंदी ख़तम थी त आबमाए हरमुज खां गुज़रण जो अमल असांजे तय कयल इंतज़ामनि तहत थींदो। ईरानी आबमाए हरमुज ते ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी अमन वाइदे ताईं पहुचण जे लाइ अहम ऐं असांजी अज़ीम क़ुर्बानीनि जे बुनियादी सुतून मां हिकु अहम जोग्राफ़ी अहमियत आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। जीए एफएम की आवाज,
3: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ओके जी, इसके अलावा हम चलते हैं आगे और कॉल्स लेते हैं आप लोगों की कॉल लेने के लिए 0113488। चेक करेंगे जी नेक्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से। हेलो हेलो, मुझे हेलो

0: कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, DIT कोर्स, आसान तरीकन से सीखे फीस में मयारी तालीम हासिल करियो। आई पहेंजी समर वेकेशन भी आई सिख्या जियो बनायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। एडमिशंस ओपन नाउ। व्हाट्सएप 0388 30, मोबाइल 0300 9 31 20 0301 3865 090, एड्रेस लाल टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 feet road, भरसा IBA यूनिवर्सिटी, Gate No. 2, सखर। ग्लैमर इंस्टीट्यूट।
1: घर में बैठो यहाँ पर ठीक है, शायद मुझे जिंदगी लायका दवाई।
2: सुनिए
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध
4: पिता
3: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क।
3: सूरत का
4: ओके जी, इसी के साथ हम लास्ट एंड लकी कॉलर लेके प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं लास्ट एंड लकी कॉलर ले पाऊंगी, सो दैट आज का प्रोग्राम यहीं तक, और इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। और जब हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे चुटचाट होगी हमारी शाम को, और शाम को हम आपसे चुटचाट करेंगे 4 से लेकर 5 बजे तक, 1 घंटा नॉन स्टॉप मेरा साथ रहेगा। सो इस प्रोग्राम में कल तो ईद है, कल का मेरे ख्याल स्ट्री के बाद में होगा, इसके 7 से लेकर 9 बजे तक, ठीक है जी। सो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन ये स्केड्यूल है, देन उसके बाद जो है रूटीन शोज को हम कंटिन्यू करेंगे। सो ईद किसने करने ज्वाइन, ईद का स्केड्यूल आपको बता, 7 से लेकर 9 बजे तक आपका और मेरा ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने के लिए सोना जरूरी है, जरूरी हुआ करता थे। So this is me, RG Rukhsar, signed out. Take care, amani khuda, Allah Hafiz.

0: अब आप FM नेटवर्क पर KTN नौ शहरों।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: It's 1 PM by
4: Michael Habib भरोसे का
0: पर KTN News।
5: कोई अहमियत आए रूस जो यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी बमबारी जो मनसूबो। रूसी पढ़े वजीर के अमेरिकी सिफारतकार ने शहरों के जल्द कीव छड़ने की वार्निंग। सभी यूक्रेनी शहरी फौजी हंधन का परे रहन। रूसी पढ़े वजीर सर्गे लारोव ए अमेरिकी पढ़े वजीर मार्को रूबियो विच में टेलीफोनिक राबतो भी थो। यूक्रेन जंग ए ईरान की सूरत हाल से गाल थी। शिकार पर फसाइंग में बाईपास के हथियारबंदन पान करीम बख्श एहसान उल्ला मारफानी के कतल कर छोड़ पुलिस चौराहे वाक्य मारफानी बिरादरी की बिंदुन में पुराने तकरार का पेश।

0: अरब फसा करण जेलकी साहब सरकारी उदय बिन जवाबदारनि ख़िलाफ़ केर काकिल केस में ॼाणायो आहे त घोट अली ख़ान जतोई में जवाबदार अब्दुल वाहिद ऐं महमदू बडाणी जतोई नारी यासमीन बडाणी जतोई खे क़तल करे लाश गुम करे छॾियो आहे जवाबदार फरार आहिनि। हैदराबाद ऐं कादिरपुर सां ॿ लाश अथे हैदराबाद जे हालानाके वारे इलाइक़े में पिंजारी बाह मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। कादिरपुर सां नूर मोहम्मद पतण वटां सिंध दरिया मां अणॼातल शख़्स जो लाश अथे पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई जे लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। ऐं जंगल भरिसां बंगलाणी घरनि में कारहे तकरार सां झेड़ो त ज़ख़्मी ॻोठ मेलो बंगलाणी में झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि क़ुर्बान अली यासीन ऐं गाही ज़ख़्मी। शरीफ़ बंगलाणी धुर जो चवणु आहे त पूरो कारहनि जो इल्ज़ाम वणे टिनि ॼणनि खे गोलियूं वञी ज़ख़्मी कयो वियो।
1: आप सुन रहे थे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कैसा महसूस होगा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 PM.
2: This time check is brought to you.
3: रखन दिया है तो सेहत अंताई हलन दिया है. मेंट जे तरफ हो.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

पाकिस्तानी अजबा दौरो अजबा से मुलाकात भी कई वफाकी घरों में एक सौ वर्ष की जबाही रिहायशी सहूलतों बाबत भी पुछो पाकिस्तान ए चीन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार मजबूत करने से तफा चीन ए पाकिस्तान पारा गरियल पधराई जारी पधराई मूजिब सी पैक पॉइंट 2.0 की तरक्की ग्वादर पोर्ट के इलाके के राबते वालों से तफाक दहशतगर्दी के खिलाफ विच मैार की मुखालफत भी बढ़ाई गई पाबंदी वाले टीडीपी एवं दहशतगर्द तंजीमों खिलाफ गरियल मौके पर जाया वो चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिश की वाखाण कई पाकिस्तान में चीनी शहर ने मनसूबे की सिक्योरिटी सख्त करने अजम सरबार हवाई हमला हमलन बाद हिंदर वायदे की गाल भी करने लगो सेंटकॉम ने चवाया अमेरिकी फौज दखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हमन के निशानों पर आयो बारूदी शुरू

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: इंद्रजो
1: इट्स 3 पीएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़
4: ओही अल्लाह ताला की इबादत आहे तौहीद ते अमल करण ईमान जो हिस्सो आहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो आख़िरी नबी आहे तक़वा इख़्तियार कंदड़नि खे जन्नत जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई वई आहे सब्र कंदड़नि जे लाइ अल्लाह ताला अज़ीम अजर जो वाइदो कयो आहे अल्लाह जो फरमान आहे त हमेशा कूड़ खां बचो अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए हज जे ख़ुतबे में ख़ुसूसी दुआ मिना खां हज पांधी हज जो मुख रुकुन हाजी सघो

हज़ जो खुतबो ॿुधण खां पोइ वापारीअ टेपारी जी निमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा सिज लथे सुमरी जी निमाज़ बि गॾु अदा करण खां पोइ मुज़दलिफ़ा रवाना थींदा, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारे रब खे राज़ी करण जे लाइ दुआऊं घुरंदा।

ईरान अमेरिका ॻाल्हियुनि में नाकामी जा इम्कान वधी विया। ॻाल्हियुनि में हकारी अगभराई जी दावा कंदड़ अमेरिका जा ईरान ते ॿीहर हवाई हमला। हमलनि बाद ॿीहर माहिदे जी ॻाल्हि बि करणु लॻो। सेनकाम जो चवण आहे त अमेरिकी फ़ौज ॾखण ईरान में ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि खे निशानो बणायो। बारूदी सुरंगूं विछाइण वारनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे बि निशानो बणायो वियो। ईरानी मीडिया जो चवण आहे त बंदर अब्बास में सूरतहाल कंट्रोल में आहे। अमेरिकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो भारतीय शहर जयपुर तरीक़े सां हर मुस्त खुलणो आहे। हाणे बि ईरान सां मुआदो मुमकिन आहे। अमेरिकी सदर बि चाहे थो त मुआदो थिए।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जो रचाव थियल यूरेनियम अमेरिका हवाले कयो वेंदो जेको तबाह कंदासीं या वरी उहो यूरेनियम ईरान सां गॾिजी ईरान में ई तबाह कयो वेंदो। डोनाल्ड ट्रम्प सोशल मीडिया अकाउंट ते तस्वीर शेयर कई जंहिं में ओबामा जी पॉलिसी रदीअ जी टोकरीअ में ॾेखारी पोइ जेको अमेरिकी जंगी जा यूरेनियम ईरान में ई हूंदो आहे हरमुज़ ॻाल्हियुनि जो हिसो न बणबो। पार्लियामेंट जे कौमी सलामती कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त अमेरिकी नाकाबंदी ख़तम थी त अबनाह हरमुज़ खां गुज़रण जो अमल असांजे तय कयल इल्ज़ामनि तहत थींदो। ईरानी अबनाह हरमुज़ ते ईरान जी ख़ुदमुख़्तियारी अमन माहिदे ताईं पहुचण जे लाइ अहम ऐं असांजे अज़ीम क़ुर्बानीनि जी बुनियादी सुकून मां हिकु अहम जोग्राफ़ी अहमियत आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: 588 शहरों में बैंक अलबी के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: अपना शहर अपना घर मठियारी 91.6।

0: ब्रांड तो तेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बीप के कैन करोगे तो हाथ जीतने का 600 का

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज होती जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, जीए FM की आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 4 PM. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे
5: अजय बेफ़ूसी तो आहे

मिना खां मैदान इरफात बदल वी लख का हज पांजे रन हज जो मुख रुकन मुफ़ अरफा अदा कर वरतो हाजी सगोरन हज जो खुतबो बुधण का वेपारी वेपारी की निमाज गद अदा कई हाजी सगोरा सिजल थे सोमणी की निमाज भी गद अदा करण का मुज़दलिफा रवाना थी जिते समूरी रात खुलियल आसमान हेठ गुजारी रब के राजी करण के लिए दुआ घुरंदा सुभाणे शैतान के पथिरन का एहराम खोले छदींदा बाद में समूरा हाजी सगोरा सुनते इब्राहिम जानवर की कुर्बानी कंदा वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो मिना में पाकिस्तानी हज पांजे कैंप्स जो दौरो मोहसिन नकवी हज पांजे मुलाकात कई सहूलियत जायजो वरतो

पाकिस्तान ऐं चीन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार वधीक मज़बूत करण ते इतफ़ाक़ चीन ऐं पाकिस्तान पारां गॾियल पधिराई जारी। वधाए मुजिब सीपैक पॉइंट 2.0 जी तरक़ी ऐं ग्वादर पोर्ट खे इलाइक़े जे राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ मिटे मयार जी मुख़ालफ़त बि भरिजाई वई। पाबंदी मिलियल TTP ऐं ॿियनि दहशतगर्द तंज़ीमुनि ख़िलाफ़ गॾियल मौक़िफ़ भरिजायो वियो। चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी जे लाइ पाकिस्तान जे कोशिशुनि जी वाखाण कई। पाकिस्तान में चीनी शहरनि ऐं मनसूबनि जी सिक्योरिटी सख़्त करण जो अज़म। पाकिस्तान पारां ताइवान मामले ते चीन जे मौक़िफ़ जी हिमायत।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध की मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज,
0: जीए एफएम नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: माइनस हो सारी टेंशन्स, जब हो आपके पास Zong 4G की प्लस ऑफर। लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: क्या देख रहे हो,
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
5: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: इट्स 5 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: ईमान वारनि जो शान आहे कंहिं खे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जे हाल ते रहम फरमाए।

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: लखे हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो बुधण का पोए दिपहरी ए त्रिपहरी की नमाज गड अदा कई। हाजी सगोरा सिजलते मज़दलिफा रवाना थींदा, जिते समूरी रात खुलियल आसमान हेठ गुजारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान के पथरियूं हणण का पोए अहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा। पाबंदी बढ़ियल, टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कें भी दहशतगर्द ग्रोह के कें भी सरजमीन तां इलाकाई सलामती के नुकसान पहुंचाने की इजाजत न दिबी। पाकिस्तान ए चीन जो इतफाक बिन्हीं मुल्कन जो अफगानिस्तान के मामले ते वेझा लगापा जारी रखने ते भी इतफाक करे वरतो। वज़ीर आज़म भी चीनी दौरे बाबत जारी थियल पधराई में सी पैक की तरक्की ए गवादर पोर्ट के इलाकाई राबते वारो मरकज पैर ते इतफाक कयो वियो। दहशतगर्दी के खिलाफ मिटे मयार की मुखालफत चीन ईरान अमेरिका जंगबंदी लाए पाकिस्तान की कोशिशन की वखाण कई। पाकिस्तान में चीनी शहरियन ए मनसूबन की सिक्योरिटी सख्त करण वाले अज़म जो भी वर्जाओ। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद दखण ईरान में मुख्तलिफ हंधन ते हमला। अमरीकी फौज पारा ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग हंधन ए बारूदी सुरंगू वछाण वाले ईरानी बेड़ियन के निशानो बयान भी दावा। अमरीकी सेंटकॉम आए त अमरीकी फौज जारी जंगबंदी दौरान सफर जो मुजाहरो कंदे पैंजो दिफा कंदी। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जयपुर में मीडिया से गालाईंदे चयो कें न कें तरीके से हुरमुस त खुलणो आहे, हाणे ईरान सां मुआहिदो मुमकिन आहे। अमरीकी सदर भी चाहे तो मुआहिदो थे। ईरानी पासदारन इंकलाब गार्ड्स पारा अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराइण जी दावा। ईरानी मीडिया मूजिब ईरानी पासदारन गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज ते फायरिंग भी कई। ईरानी फौज के तर्जुमान अबुल फजल शकारजी चयो आहे त जंगबंदी की भजगड़ी ते रदे अमल अग खां वधीक शदीद ए ताकतवर हूंदो। ईरान अगराई कंदड़ अमरीका के सख्त चमाट बाहे कढ़ी। अल्लाह अकबर के हथियार ईरानी कौम के कुवत ए ताकत अता कई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज के मौके ते पैगाम। मुश्तबा खामनाई चयो त खिते जो कौमू ए मुल्क हाणे अमरीकी अडन लाए ढाल न बणंदा। अमरीका के हाणे खिते में भाईवारन ए फौजी अडन के क्याम लाए महफूज पनागाह भी न मिलंदी। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया ए नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैंजी उम्र के आखिरी मरहले के वेझो पहुंची चुको है। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह डहरकी पहुतो। डहरकी दरबार पहुची साईं साधराम जे देहांत ते वारिसनि सां ताज़िर। वॾे वज़ीर चयो आहे त साईं साधराम जे विछोड़े सां वॾो ख़ाल पैदा थियो आहे। उमीद थो कयां त साईं साधराम जो मोहबत ऐं अमन जो पैगाम ॾिनो हो। संदसि पोयर ऐं पोए लॻ इन पैगाम ते हलंदा रहंदा। अठाई टिन सालन का प्रिया कुमारी बाजियाब न थियण ते हुकूमत शर्मिंदा आहे। संदस बाजियाबी लाइ पुलिस कोशिश करे पई। दरू वज़ीर भी इन खे ॾिसे पए। वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त कच्चे मां धाड़ेलनि जे मुकमल ख़ात्मे लाइ ऑपरेशन जारी रहंदो। घोटकी कंदकोट पुल न पर उन हू रग हो गार्डर किरियो हो।

0: शिकारपुर भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में ब नौजवान कत्ल जे बाद बाईपास से हथियारबंदन फायरिंग करे नौजवान करीम बख्श और एहसानुल्लाह मारपाणी के कत्ल कर छो। पुलिस जो चवण है वाकियो मारपाणी बिरादरी की बिन धुरियन में पौराणी तकरार ता पेश आयो है। जांच जारी है। हैदराबाद और कादिरपुर भरसा ब लाश हथ हैदराबाद के हाला नाके वाले इलाके में पिंजारी वाह में अणजातल शख्स जो लाश मिलो। कादिरपुर भरसा नूर मोहम्मद पतण वटा सिंधु दरिया में अणजातल शख्स जो लाश हथ पुलिस लाश जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल कर सको।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
4: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीत के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीत से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीत, रिश्ता भरोसे का।
6: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
1: सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 6 PM. This time check is brought to you by.
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: रहमान अलूसैफी हज जो खुतबो ॾींदे चयो त मुसलमाननि खे मुसीबत में सबर जो दग न छॾणु घुर्जे। सबर करण वारनि लाइ अलाह वॾे अजर अज़ीम जो वाइदो कयो आहे। जिन क़ौमनि ज़ुल्म कयो ऐं नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ऐं ईमान वारो अलाह खां डिॼो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए।

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم.
1: लखे हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो बुधण खां पोइ बि पहिरीं ऐं टे पहिरीं जी नमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा सिज लथे वसल पा रवाना थींदा, जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पतनू हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा, बाद में सुनत इब्राहिम तहत जानवरनि जी कुर्बानी कंदा।

0: पाबंदी मड़ियल टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कें भी दहशतगर्द ग्रोह के कें भी सरजमीन ता इलाकाई सलामती के नुकसान पहुंचाने की इजाजत न दी। पाकिस्तान चीन जो इतफाक बिन्ही मुल्क जो अफगानिस्तान के मामले से वेझा लगापा जारी रखने से भी इतफाक कर वरतो। वजीर आजम के चीनी दौरे बाबत जारी थियल पधराई में सी पैक की तरक्की ए गवादर पोर्ट के इलाकाई राबते वो मरकज पाण से इतफाक कर दहशतगर्दी खिलाफ बिटे मयार की मुखालफत। चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाए पाकिस्तान की कोशिश की वखाण कई। पाकिस्तान में चीनी शहरियन मनसूबन की सिक्योरिटी सख्त करने बारे असम जो भी वर्जाओ। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद दखण ईरान में मुख्तलिफ हंधन से हमला। अमरीकी पारा ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग हंधन बारूदी सुरंग बचाण वारे ईरानी बेड़ियन के निशानों पाण की दावा। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है अमरीकी फौजी जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुजाहरों करते दिफा कंदी। अमरीकी परे वजीर मार्को रूबियो भारतीय शहर जयपुर में मीडिया से गालींदे कें न कें तरीके से हुरमुस त खुलणो आ हाँ भी ईरान से मुआदो मुमकिन है। अमरीकी सदर भी चाहे तो मुआदो थे। ईरानी पासदारन इनकलाब गार्ड्स पारा अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराने की दावा। ईरानी मीडिया मूजिब ईरानी पासदारन गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज से फायरिंग भी कई। ईरानी फौज के तर्जुमान अबुल फजल शकारजी है जंगबंदी की भजगड़ी से रद्द अमल का शदीद ए ताकतवर हों। ईरानी परेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई है अमरीका हुरमुज़ खान जे इलाके में जंगबंदी की भजगड़ी कई। ईरान पैंजे दिफा लाए कें भी कदम का पुख्ते न हटन। ईरान अगराई कदड़ अमरीका के सख्त चमाट बाहे कढ़ी। अल्लाह अकबर जे हथियार ईरानी कौम के कुवत ए ताकत अदा कई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज के मौके से पैगाम। मुश्तबा खामनाई खिते जो कौमू ए मुल्क हाँ अमरीकी अडन लाए ढाल न बढ़जंदा। अमरीका के हाँ खिते में भाईवार फौजी अडन के कयाम लाए महफूज पनागाह भी न मिली। मुस्तबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैंकी उम्र के आखिरी मरहल के वेझो पहुंची चुको है। सिंध में पानी की सख्त खोट बावजूद पंजाब तकरारी लिंक कैनाल जरिए पानी की खणत बंद न कई। पीपल्स पार्टी जो सख्त एहतजाज पंजाब जो अमल सिंध के बंजर बनाने की कोशिश ए पानी साव की भजकड़ी करार। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो है इसा खरीफ के सीजन में रुगो सिंध लाए पानी की 27 सैकड़ो घटताई कई। पंजाब लाए पानी की घटताई 0 सैकड़ो कई वही। 67 सैकड़ो जरी पैदावार कदड़ सिंध सूबे के पानी जो जायज हिस्सो छो न पो दिनो वे। पानी के हिस्से में कटौती कर सिंध जो माशी कतलेआम किया पो वे। यो सूली जवाब नथो ठहे त सिंध के फसल लाए पानी देने बदरा डेमन में जखीरो पो वे। हिस्सा हमेशा पानी के 1991 माहिदे से अमल दरामद करण में नाकाम साबित थी है। वजीर आजम सिंध जो आवाज बुधे इर्सा की नाकामी जो नोटिस वे सिंध के हिस्से जो पानी दियारे। वडो वजीर सैयद मुराद अली शाह डहरकी पहुंतो रड़की दरबार पहुंची साईं सादराम के देहांत ते वारिसन सा ताज़ियत कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन. GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरत ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट। ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: وتركوا ما يكذبكم الله والحق. قال الله تعالى يوحي الموتى
1: ذلك بأن الله هو الحق
0: كل شيء قدير
1: وأنه يحيي الموتى
0: آتي وأنه
1: يحيي على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के वी लख का हज पांडे हज जो मुख रुकन वकूफ अरफा अदा कर वरतो। मस्जिद नबरामा मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुसैफी हज जो खुतबो डींदे चयो त मुसलमान के मुसीबत में सफर जो दग न छड़न घुर्जे। सफर करण वारन लाए अला वरे अजरे असीम जो वायदो कियो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो ऐं नाशुकरी कई इन्हनि खां नेमतूं खसी वयूं। ऐं ईमान वारो अलाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी मदद न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जे हाल ते रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद रमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ बि पहिरीं ऐं टे पहिरीं जी नमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा मसलफ़ा पहुचण शुरू थी विया जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पथरियूं हणण खां पोइ अहराम खोले छॾींदा। बाद में सुनत इब्राहिमी तहत जानवरनि जी क़ुर्बानी कंदा। पाबंदी बढ़ियल टीटीपी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह खे कंहिं बि सरज़मीन तां इलाक़ाई सलामती खे नुक़सान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिबी। पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक़ ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान जे मामले ते वेझा लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर-ए-आज़म जी चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में सी पैक जी तरक़ी ऐं गवादर पोर्ट खे इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। दहशतगर्द जे ख़िलाफ़ बिटे मयार जी मुख़ालफ़त चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण कई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चयनि चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि पहुची।

0: अमरीका जा चंगबंदी बावजूद दखण ईरान में मुख्तलिफ हंधनते हमला। अमरीकी फौज पारा ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग हंधन बारूदी सुरंग विछाण वारियन ईरानी बेड़ियन के निशानों बनाने की दावा। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है अमरीकी फौज जारी चंगबंदी दौरान सबर जो मुजाहरों करो दिफा कंदी। अमरीकी परदेही वजीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जयपुर में मीडिया से ईंदे कें न कें तरीके से हरमुस तो खुलण है। हाने भी ईरान से माहदो मुमकिन है। अमरीकी तरफी चाहे तो माहदो थे। ईरानी पासदारन इंकलाब गार्ड्स पारा अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराण की दावा। ईरानी मीडिया मुजिब ईरानी पासदारन गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज से फायरिंग भी कई। ईरानी फौज के तर्जमान अबुल फजल शकारती है जंगबंदी की बचकड़ी से रद्द अमल अग का शदीद ताकतवर हों। ईरानी पदे वजारत के तर्जमान इस्माइल फकाई है अमरीका हुर्मुज़गान के इलाके में जंगबंदी की बचकड़ी कई। ईरान पैं दिफा लाए कें भी कदम का पुख्ते न टो। ईरान अगराई कंदड़ अमरीका के सख्त चमाट वाहे कढ़ी। अल्लाह अकबर के हथियार ईरानी कौम के कुवत ए ताकत अदा कई है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जो हज से मौके से पैगाम। मुश्तबा खामनाई खिते जोमू ए मुल्क हाने अमरीकी अदन लाए ढाल न बढ़ा। अमरीका के हाँ खिते में भाई वार फौजी अदन के क्याम लाए महफूज पनागा भी न मिली। मुस्तबिल उम्मत इस्लामिया नई इस्लामी तहजीब जो है। इसराइल पैंजी उम्र के आखिरी मरहले के वेझो पहुंची चुको है। मुखालिफ सूर इतिहाद तहरीक तहफुज आइन पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमान मुल्क का इब्राहिमी माहदे में शामिल थे वाले मुतालबे के रद्द कर छो। अड़े मुतालबे से गलती जो इजहार बदराई में अमन माहदे के मशहूर करण इसराइली एजेंडा जो वाजह सबूत है। हुकूमत इन तजवीज़ मुतालबे से बिना देर ए चिटो मौके अख्तियार कर फलस्तीनियन के 80,000 का शहीद के खून जो कर्ज अमानत है। सिंध में पानी की सख्त खोट बावजूद पंजाब तकरारी लिंक कैनाल जरिए पानी की खणत बंद न कई। पीपल्स पार्टी जो सख्त एहतजाज। पंजाब जो अमल सिंध के बंजर बनाने की कोशिश ए पानी छाव की बदकड़ी करार। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो है इंसाफ खरीफ के सीजन में रुगो सिंध लाए पानी की 27% घटताई कई। पंजाब लाए पानी की घटताई 0% कई वही। 67% जरिए पैदावार कदड़ सिंध सूबे के पानी जो जायज हिस्सों छो न पो दिनों वे। पानी के हिस्से में कटौती कर सिंध जो माशी कतलेआम पो वे यो असूली जवाब नो टे सिंध के फसल लाए पानी दियण बदर डेमन में जखीरो वे। इर्सा हमेशा पानी के 1991 माहदे से अमल दरामद कर में नाकाम साबित की है। वजी अजम सिंध जो आवाज बुधी इर्सा की नाकामी जो नोटिस वे सिंध के हिस्से जो पानी दियारे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खबर सियासी हुजे या समाजी,
3: मजहबी हुजे या सरकारी,
2: खबर शहर जी हुजे या गोठ जी,
3: सखर डिवीजन जी आवाम जो खबरों।
2: जी सखर न्यूज बुलेटिन में
3: रोजानो रात 9-10 वगे GAFM 88 नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज।

0: पागल।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

रखे हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: وترك الأمر كبير أن الله هو الحق قال الله تعالى
2: وأنه يحيي الموتى
1: ذلك بأن الله هو الحق
2: كل شيء قدير
1: وأنه
2: يحيي الموتى
1: آتي
2: وأنه
1: على كل شيء قدير
3: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया के 20 लख का वधिक हज पांधेड़न हज जो मुख्य रुकन वकूफ अरफा अदा करे वरतो। मस्जिद निमरा मां मस्जिद नबी के इमाम अली अब्दुल रहमान अल कुजैफी हज जो खुतबो डींदे मुसलमान के मुसीबत में सबर जो दग न छड़न घुर्जे। सबर करण वारन लाए अला वडे अजरे अजीम जो वायदो कियो आहे। जिन कौमन जुल्म कयो नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ए ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वायदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करण ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालति रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद नमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ विपहरी ऐं त्रिपहरीअ जी निमाज़ गॾु अदा कई। हाजी सगोरा मज़दलफ़ा पहुचण शुरू थी विया जिते समूरी राति खुलियल आसमान हेठि गुज़ारींदा। हाजी सगोरा सुभाणे शैतान खे पतियूं हणण खां पोइ आराम खोले छॾींदा। बाद में सुनते इब्राहिम विदया जानवर जी क़ुर्बानी कंदा। पाबंदी बढ़ियल TTP ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट समेत कंहिं बि दहशतगर्द ग्रोह खे कंहिं बि सरज़मीन तां इलाकाई सलामती खे नुक़सान पहुचाइण जी इजाज़त न ॾिनी। पाकिस्तान ऐं चीन जो इतफ़ाक़ ॿिन्ही मुल्कनि जो अफ़गानिस्तान में मामले ते वेझा लाॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर आज़म जी चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में CPEC जी तरक़ी ऐं गवादर पोर्ट जे इलाक़ाई राब्ते वारो मर्कज़ बणाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ किटे मयार जी मुख़ालफ़त चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिशनि जी वखाण कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ 3 ॾींहनि जो चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि ॾेई पहुची वियो। विच ओभर में चिपटाइण वारी सूरतहाल आलमी सतह ते मुआशी बुहरान पैदा कयो आहे। पाकिस्तान चिपटाइण कटाइण लाइ नेकनीयती सां कोशिशूं कयूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल जे इजलास में ख़िताब। इसहाक़ डार चयो त चिपटाइण कटाइण लाइ पाकिस्तान ॻाल्हियुनि लाइ ज़ोर भरियो। पाकिस्तान जे अमन ॻाल्हियुनि लाइ कोशिशनि जी वखाट ते दोस्त मुल्कनि जा थोरायता आहियूं। 80 सालनि खां कश्मीर जो मसलो हल न पियो थिए। आलमी कानून ऐं माहिदनि जी पासदारी यकीनी बणाइण घुर्जे। पाकिस्तान सिंतास माहिदे जी तरफ़ी मुअतली तस्लीम न थो करे। पाणीअ जो हथियार तो इस्तेमाल कंहिं बि सूरत में क़बूलण जो न आहे। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद ॾखण ईरान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज पारां ईरान जे ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि ऐं बारूदी सुरंगू विछाइण वारियुनि ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीकी सेनकाम जो चवण आहे त अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजो दिफ़ा कंदी। अमरीकी परदेही वज़ीर मार्को रोबियो भारतीय शहर जे पूर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो कंहिं तरीक़े सां हुरमुस न खुलणो आहे। हाणे बि ईरान सां माहिदो मुमकिन आहे। अमरीकी सदर बि चाहे थो त माहिदो थिए। ईरानी पासदारनि जे इंकलाब गार्ड्स पारां अमरीकी MQ-9 ड्रोन किराइण जी दावा। ईरानी मीडिया मौजिब ईरानी पासदारनि गार्ड्स अमरीकी F-35 जंगी जहाज ते फायरिंग बि कई। ईरानी फ़ौज जे तर्जुमान अबुल फज़ल शकारची चयो आहे त जंगबंदी जी भञगड़ी ते रद्द अमल अॻ खां वधीक शदीद ऐं ताक़तवर। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका हुरमुज़गान जे इलाइक़े में जंगबंदी जी भञगड़ी कई। ईरान पंहिंजे दिफ़ा लाइ कंहिं बि क़दम खां पुठिते न हटंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग ते मुशावरत लाइ सुभाणे सुबुह जो कैंप डेविड में काबीना जो इजलास सॾाए वरितो। गैर मामूली इजलास में काबीना जे समूरनि मेंबरनि खे शिरकत जी हिदायत। अमरीका मीडिया मौजूदु इजलास में अमरीका जे अॻूणे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड बि ख़ुसूसी तौर शिरकत कंदी। ईरान अगराई कंदड़ अमरीका खे सख़्त चमाट वाए कढी। अलाह अकबर जे हथियार ईरानी क़ौम खे कुवत ऐं ताक़त अदा कई आहे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई जो हज जे मौक़े ते पैगाम। इश्तबा खामनाई चयो त खिते जूं क़ौमूं ऐं मुल्क हाणे अमरीकी अॾनि लाइ ढाल न बणजंदा। अमरीका खे हाणे खिते में भाई वारनि ऐं फौजी अॾनि जे क़याम लाइ महफ़ूज़ पनाहगाह बि न मिलंदी। मुस्तक़बिल उमत इस्लामिया ऐं नई इस्लामी तहज़ीब जो आहे। इसराइल पंहिंजी उमत जे आख़िरी मरहले जे वेझो पहुची चुको आहे। मुखालिफ धुर इतिहाद तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे मुसलमान मुल्कनि खां इब्राहिम माहिदे में शामिल थियण वारे मुतालबे खे रद्द करे छॾियो। अहिड़े मुतालबे ते गणतीअ जो बि इज़हार बदराई में चयो आहे त अमन माहिदे खे मशहूर करण इसराइली एजेंडा जो वाज़ह सबूत आहे। हुकूमत इन तजवीज़ ऐं मुतालबे ते बिना चिटो

0: मौके इख्तियार करे। फलस्तीनियन के 80,000 का शहीदन के खून जो कर जमानत है। यो वायदो इसराइली गुंडागर्दी के कानूनी तहफ़ देने की। सिंध में पानी की सख्त कोर्ट कैनाल जरिए पानी की खणत बंद न कई। पीपल्स पार्टी जो सख्त एहतजाज। पंजाब जो अमल सिंध के बंजर बनाने की कोशिश है। पानी टाव की बजकड़ी करार। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़े है इंसा खरीफ के सीजन में रुगो सिंध लाए पानी की 27% घटताई कई। पंजाब लाए पानी की घटताई 0% कई वही। 77% जरई पैदावार कदर सिंध सूबे के पानी जो जायज हिस्सों छो नो दिनों वे। पानी के हिस्से में कटौती कर सिंध जो माशी कतलाम पे वे। यो असूली जवाज नो ठहे तो सिंध के फसल लाए पानी डेण बदर डेमन में जखीरो वे। इस हमेशा पानी के 1991 माहदे से अमल दरामद कर में नाकाम साबित किया है। वजी अजम सिंध जो आवाज बुधे इसा की नाकामी जो नोटिस वे सिंध के हिस्से जो पानी दियारे। पर वजीर सैयद फवाद अली शाह डहर की पहुंतो। रेड की दरबार पहुंची साईं साध राम के ध्यान से वारिसन साहब ताजियत कई। वडे वजीर है साईं साध राम के विछोड़े से वो खाल पैदा थो है। उम्मीद तो क्या तो साईं साध राम जो मोहब्बत अमन जो पैगाम दिनों हो संदस पोयर कोई लगे न पैगाम से हल्दा रहंदा।
1: अपनी 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: हैदराबाद नवाबशाह क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: कराची, हैदराबाद, दादू, दादा, जेकबाबाद, नवाबशाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हैदराबाद जादू जेकबाबाद नवाबशाह क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का।
1: हैदराबाद, दादू, दादा, सीपुर, सीपुर, जवान।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हैदराबाद दादू जेकबाबाद नवाबशाह क्वेटा एंड चित्राल You're listening to the Hot FM Network.

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ख्वाबों के।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: Jacobabad, Nawab Shah, Quetta, and Chitral. You're listening to the Hot FM Network.

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: कराची, हैदराबाद, दादू, दादा, जेकबाबाद, नवाबशाह, क्वेटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.

स्ट्रेंथ की हो तो आवाज भी स्ट्रेंथ की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आवाज नहीं पाए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान विच में टेलीफोनिक राबत हो बिन्हीं अखबारों के वापार ए सीरपकारी के शोबन खिते में अमन के क्याम लाए सरकार जारी रखने इतफाक। तुर्क हिंदुस्तान में ट्रेन धमाके से दुख जो इजहार कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान दहशतगर्दी खिलाफ जिदोजहद जारी रख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क क़यादत अवाम के ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश कर। विचोबर में चिपटाण वाली सूरतहाल आलमी सतह से माशी बहरान पैदा किया है। नेकनीयती से कोशिशों क्यों नायब वजीर आजम इसहाक डार जो बजट के खिलाफ चयो तो चिपटाण घटाने लाए पाकिस्तान गादियों लाए जोर भर। पाकिस्तान के अमन गादियों लाए कोशिशन जीवा खाट दोस्त मुल्कन जोराता हूं। 80 साल का कश्मीर जो मसलो हल न पो थे। आलमी कानून ए माहिदन की पासदारी यकीनी बनान घुर्जे। पाकिस्तान सिंध ताश माहिदे की मतली दस्तियार दौरे की सूरत

0: سبيل الله.
1: قال الله تعالى
0: وأنه يحيي الموتى
1: ذلك بأن الله على كل شيء قدير
0: وأنه
1: على كل شيء قدير.
2: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया जे 20 लख का वधिक हज पांजेड़न हज जो मुख रुकन वकूफ अरफा अदा करे वरतो। मस्जिद नबरामा मस्जिद नबी जे इमाम अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफी हज जो खुतबो डींदे चयो त मुसलमानन के मुसीबत में सबर जो दग न चढ़ण घुर्जे। सबर करण वारन लाइ अलाह वॾे अजरे अज़ीम जो वाइदो कयो आहे। जिन कौमन ज़ुल्म कयो ऐं नाशुक्री कई उन्हनि खां नेमतूं खसियूं वयूं। ईमान वारो अल्लाह खां डिजो ऐं तकवा अख़्तियार करे वाइदे जी पासदारी करियो। तकवा अख़्तियार करणु ईमान वारनि जो शान आहे। कंहिंखे बि अल्लाह ताला सां शरीक न कयो ऐं रब खां सवाइ कंहिं बि गैर जी इबादत न कयो। अल्लाह ताला मुसलमाननि जी हालत ते रहम फरमाए। लखे हाजी सगोरन मस्जिद निमरा में हज जो खुतबो ॿुधण खां पोइ विपहरी ऐं त्रिपहरी चिड़ियूं हणण खां पोइ ॾींदड़ जानवरनि जी कुर्बानी कंदा। ज़मीन पाकिस्तान ऐं चीन जे रुकण जो अफ़गानिस्तान जे मामले ते लॻापा जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ करे वरितो। वज़ीर-ए-आज़म जे चीनी दौरे बाबति जारी थियल पधराई में तरक़ी ऐं गवाबते वारो इतफ़ाक़ कयो वियो। विटे ब्याज जी मुख़ालिफ़ ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिश जी वाखाण कई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ चइनि ॾींहनि जो चीन जो सरकारी दौरो मुकमल करे वापसि ॾेई पहुचियो। अमरीका जा जंगबंदी बावजूद ॾखण ईरान में मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हमला। अमरीकी फ़ौज पारां ईरान जे ड्रोन लॉन्चिंग हंधनि ऐं बारूद ईरानी ईरानी बेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी दावा। अमरीका वणाए त अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी दौरान सबर जो मुज़ाहिरो कंदे पंहिंजो

0: असांजे मामले ते वेदापा जारी करे वरितो वज़ीर आज़म थियल पंद्रहीं में सी पैक जी तरक़ी राब्ते वारो मर्कज़ पाइण ते तबाह कयो वियो। दहशत व्याज जी मुखालफ़त चीन ईरान अमरीका जंगबंदी लाइ पाकिस्तान जी कोशिश जी वाखाण कई।
1: आप सुन रहे थे FM KTN न्यूज।
2: हैदराबाद जादू जेकबाबा दवटा एंड चित्राल। You're listening to the Hot FM Network.